ওদিকে মেঘাটস দিবে এফএমকে মেয়েতুকে লাঞ্চ ব্রেক শুনি মালাবাগু তুমি জনিসা উম্মিদ মে করে নি শোগেতরে মেগেনস্তোন মাউলো মাতকে কি হুনতে না খামুদিয়া মাউলো মাতকে একমা মি মাউলো মাতকে আলিগামা এমমে বড় ফিলাওয়াল কর নাগাম মি কামকি টেকনোলজি বাদে এইচ নুহুটুয়েনে এআই এসসি এ নুহুটুয়েনে টেকনোলজি দুহে দুক বদল মুদারো আর মেমে স্বাণে আয় বরং হেরুন তেরিবেগিন তিবে রাঙ্গল গতুক কমমে কমমে চেবেস টেকনোলজি এখানে নো কমমে চকি সেগে রাঙ্গল গতুক বেনন কফিয়া রাঙ্গল এচকে গোস গতুক বেনন কফিয়া না হাম গতুক বেনন কফিয়া এগে গেলন বড় বড়বেগিন দানে হেমিমা আর মে কমমে মি হে কিবে সমা টেকনোলজি আহলো ভেরি এহনামে সমা রাঙ্গল গতুক টেকনোলজি বেনন কুরা বেকা বামা হেঙ্গা শে এ উম্মিদুক মিয়েদুকে লাঞ্চ ব্রেক শো নিম্মা লফশাওয়া কেলানি ವರ ರೀತ್ ಲವೆ ಹಿಮನಾದ ಮುಂಬಿದ್ ಮೆ ಕೊರನಿ ಮಿ ಮೌಲುಮತ್ತಕ ಏಕೀಗ ಶಹು ಶೋಗೆ ತೆರೆ ಮಿಗೆನೆ ಸೋನ್ ಲವತಕ ಕೀವೆಸ್ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಕಮುದಿಯ ಹಿಗ್ಯಾಮ ರೀತಿ ಲವತಕ ಕವ್ಯಕ ಮದ್ದೆನ್ ಕೊರಿಯಂ ಹುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ದವತೋರುಮು ಶಹು ಮಿಗಡಿಯ ವಕಿವೆಲಾಣಿ ದೆನ್ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವೆಲಾಗೆ ಗೆನೆಸ್ ದೆ ಟೀ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಶೋ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಹಾವೀರು ಎಮ್ಮೆ ಎಶೋ ಯವ್ವಿಸ್ ದವತೋರುಮು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಶೋ ನಿಮ್ಮ ಲವಕೆಲಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ವರಂ ಉಫಾವೆರಿ ಅದೆ ವರ ಬಾಜ್ಜವೆರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂ ಎದಮು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮೇದುಗೆ ಶೋ ನಿಮ್ಮ ಲಫ ಶಹುಮಿ ವಕೇಲನಿ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: Game on!
1: Raya, kubaki ne?
2: Mara rangalo.
1: Ani kaisa ma game kule ingi game ge ne?
2: Yes, okay.
1: Hada abhor do ame phone kulo no game ta kaichi.
2: Hada abhor. I failed so bad.
1: Me redeem kuran libe chancing, inge?
2: Okay.
1: Mifar ehme me bas mihe kai kurno ne ge ne kiye. Hama sida Raya vaad kuran cheni Raya. Key lavato get in low be who a vera board of balloon tearing a medical hunting a medical mark bowl again and dia lave mila veki thing. If Raya thing could go low key with a and a cavis meha Raya gama secret and home balloon tearing a hunter in Ardu Mufeno Midani Hamavara. Kamiab love kun terikuri Aramung and Kamiab love kun terikutuka shahusi for
2: Shahu
1: Raya and gay introduction. Raya gay introduction are Amil de Deep.
2: Vara boda viral again dia elawa ham gamis thing ege fahun thing tvm mavs unnane me
1: ek
2: show taku gaya den vara fahun den ne fenan shamil like come shop pevs
1: den edna fahun ma seketta
2: fahun ma se ekal gotak den
1: den inga furitama raya ge emme furitama lava kyumuge shauger kam me ufede gen a hisab ke wahaka dakala ma emme furitama ranga timanna timana ben me lava kiya shetimanna lava kiye enuna ma miha ku raya ka raya saraya vare reach lava kiya ge inga she mubarat ge baveriwa e hisab ban inga che lama umuru ge ka kiya hisabe ga me lava kyum manuni lava ge khanka ma shauger kam ufeduni
2: ra hiwani ham raya 3 years um fashiken karnenge I grew up hama vara raage ga sabadu lava jahane emmenta mihim vara musical lobby kura family raage genneni den ane kuderu sureves hama miha tanang hama lava kiyamun aiso den mamma boda push kure do raya me singing competitions ta ga baveri wan den mamma push kogenne mi hisaban aade uni assu do ei rai bunane tsaki
1: den e fo la mubarat takum mi feshigen gosse den mi ek lobi hu ra mi fadma seketta den mi raya ge mi kumis madahai shahu handam ve tvm ga kiya den madahai hama varam varam magbo gen dia tutku ding me du ga varam varam bodang hama viral ve gen dia madahai nga madahai ke e fo den raya ge filmi maseketta ka video la ta mi annam feshi me kina vani asu me hama gamis vara ginabai gehi ter kama ai ki ga nuni vara baur fans sunge loe ba ai ki ga miharu ti hori hisaban aate fo hunnani era mihara ko ba raya ge fans sun kina hori taru hi bai chi
2: apadus vara support libe fans sun fara tun do den era apadus vara grateful wa kame den raya so gabule vis nu kureve hama mi hisaban aade ven ne kama ka keriya ga do ten aswara grateful me hisabanga adone
1: film me mase ke takabala la raya ge hamavara baver reeti lavata ke ayase bori kuriyang annange bahuri मी आदि कुरियन अनों ए फिल्म देवी के समर आया के लावेंगे पे मी फिल्मी मसे के तक मी लाव किया दिन फेशे हिसाब उन की नवनी मी ऑडियंस के फीडबैक आए छी
2: पर साले देन ऑडियंस पुनानी देवत्तर के ऑडियंस दिबे ने देन हेट वे सन्ना ने देन लोबी वे दिबे लिबे हमा हमा वर गिनान दो देन
1: की ना सुमे देन हेट के वह कैम हम बट हम ऑब्वियसली राय है वे सैस होना डर पर की ने इट्स सर ऐसी टेको करने उन्हें ऐसे सर कुरी मत लानी क्यों ना
2: कमेंट्स नो बाला नहीं हमारे नो फैलिया करने के रंगलों आने तो ऐ असु दें कमेंट्स बाला आगे देंगे खामा विस्ना दें ओवरथिंक को देंगे अब वो रे मारंगलो दें नो बेलिया तो एमएमएस बुने नहीं नो बाला शे कमेंट्स एक हमें स्पाइफ़ फारु बेले बट ऐ अब तो उस पॉजिटिव करने के तो बाला नहीं तो हम
1: एम भी मी राया के मी फेशुमा राया के दे निमुम निमुम ऐनो पुनानी निमुंग आदि वारा फाहतो का मति इन्शाल्लाह हम वारा कुरिया राया के इंदाने मी राया के मासिक के तो के तेरे बेलुन तेरी ना हिसाब अंगे हम वारा रीत लावे कुन्शा हमें शो फशानी मी तिलो बिहुर ऐलावा इवाल दी फशा हमें बद्दो कोल दान हम वारा बे और गेम गेम तो कोल रेडी दो राया
2: यस रेडी
1: मी फारो हम यागी इंदो
2: यागी
1: इनाम गेम दान इंदो
2: यस
1: ओके राया की के शो हम कुड़ो कुड़े रुक रहे तेरे का बद्दो कोल दान

0: अभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।
1: हम हैं इस पल।